0: This is Fresh FM, home of locally grown podcasts. Get involved and make yourself heard. It's 1 o'clock.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।
2: This is Fresh FM, Te Reo Irirangi o Te Tau Ihu o Te Waka a Māui. The opinions and beliefs expressed by our announcers and program makers are not necessarily the opinions or beliefs of Fresh FM, your community access radio station. If you want to share your own opinions and beliefs, you can join us on air by making your own program and podcast. You can get more details through our website, freshfm.co.nz. This is Fresh FM.

0: At Fresh FM, we talk about media by, for, and about the top of the South, with content made by you, for you, and about your community. You, your group, or organisation could have its own content on Fresh FM. Let us know your ideas and we'll help you be heard. With a little training, you'll be on air and podcasting in no time. It's easy. Community access media and podcasts for you and your community. Share your ideas through our website, freshfm.co.nz.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।